0: होगी। मेरा नाम है भजन कुमार, फॉलो मी ऑन माई चैनल।
1: मिर्ची, इट्स

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: एक बात बताइए, अगर कल सुबह बॉलीवुड उठकर अपनी याददाश्त खो दे तो उसे अपने बारे में सबसे पहले क्या याद आएगा? धुरंधर, एआर रहमान, या फिर वो गाने जो सालों बाद भी बिना परमिशन के दिमाग में घुस जाते हैं? मुझे लगता है बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपर पावर कभी स्टार्स थे ही नहीं, इट वॉज ऑलवेज मेमोरी। और इस हफ्ते भी कहानी कुछ वैसी ही है। कुछ लोग पुरानी यादों को फिर से बेचने निकले हैं, कुछ लोग नई यादें बना रहे हैं, कुछ लोग नॉस्टैल्जिया पे जी रहे हैं एंड कुछ लोग फ्यूचर लिख रहे हैं। और हम इन दोनों के बीच खड़े हैं, पास्ट और फ्यूचर के बीच, मेमोरी और मैडनेस के बीच। Hi, it's me, Suren, and this is India's most definitive Hindi music countdown, the Mirchi Top 20. And aaj ke episode ki shuruaat kar raha hoon with a Rehman song from Main Wapas Aaunga, which is a decent soundtrack, lekin ye rockstar ya highway ke level ki nahi hai. Ye baat I am completely sure of. The songs haven't connected the same way, but here is a nice song, Mascara, jise gaya hai Nilanjana Ghosh Dastidar ne, and it is on number 20.
0: Number 20.

कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया की हर बड़ी चीज थोड़ी सी दीवानगी के साथ ही शुरू होती है। एक ऐसा सपना जिसे देखने की हिम्मत सब में नहीं होती। पच्चीस साल पहले एक फिल्म आई थी, लेकिन मैं उसका नाम अभी नहीं लूंगा। पहले उसकी याद के बारे में बात करूंगा। मिट्टी उड़ रही थी, धूप सर पर थी, लोग पसीने में भीगे हुए थे और एक पूरा गांव अपनी सांसें रोक कर खड़ा था। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये उम्मीद थी, ये जिद थी, ये वो एहसास था कि कभी कभी जिंदगी में एक ही मौका मिलता है और उसी एक मौके पर सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। आज भी जब उस फिल्म के सीन्स हमें याद आते हैं तो स्कोर याद आता है, वो ढोल याद आता है, भुवन याद आता है, गौरी याद आती है और सबसे ज्यादा वो फीलिंग याद आती है कि हम किसी फिल्म को नहीं देख रहे थे, हम उस गांव के साथ जी रहे थे। और फिर सोचिए क्या आइडिया था, गांव के लोग, अंग्रेज, 3 घंटे से लंबी ये फिल्म और क्लाइमैक्स में एक क्रिकेट मैच। आज भी ये पिच सुनकर प्रोड्यूसर्स डर जाते हैं, लेकिन आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर ने उस वक्त डर और कॉमन सेंस दोनों को साइड रख दिया और बना दी लगान। मुझे लगता है लगान की सबसे बड़ी जीत ऑस्कर नॉमिनेशन नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि उसने बॉलीवुड को बताया कि अगर कहानी में जान हो तो ऑडियंस किसी भी सफर पर आपके साथ चलने को तैयार हो जाती है। 25 साल बाद भी हम उस फिल्म को याद करते हैं, उसकी डायलॉग्स के लिए नहीं, उसकी बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि उस एहसास के लिए। और आज भी सवाल वही है, अगली लगान कौन बनाएगा? दिस एपिक फिल्म इज री-रिलीजिंग, सो वॉच इट अगर आपको वक्त मिले। बिलाल मिर्ची .20 पर फहीम अब्दुल्ला की आवाज में वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स ऑन द शो, दिस इज चांद मेरा दिल ऑन नंबर 18।

0: वेलकम टू द जंगल, पूरी इंडस्ट्री दिख जाएगी भाई आपको इस फिल्म में। एंड टॉकिंग ऑफ दिस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एके बॉलीवुड, कभी कभी किसी एक फिल्म की कामयाबी पूरी इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बदल देती है परमानेंटली। धुरंधर के बाद मुझे लगता है कि इंडियन स्पाई जॉनर उसी फेज में है। अब सिर्फ एक्सप्लोजन्स काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन वॉक्स काफी नहीं है, अब सिर्फ स्टाइलिश फ्रेम्स काफी नहीं है। ऑडियंस को खतरा महसूस होना चाहिए, वो दाव पेच महसूस होने चाहिए, और शायद इसलिए यशराज की फिल्म अल्फा का टीजर उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया जितनी उम्मीद की थी। इट्स गॉट आलिया भट्ट, इट्स गॉट बॉबी देओल, एंड इट इज गॉट शर्वरी। इट्स पार्ट ऑफ द YRFY यूनिवर्स। कागज पर तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन टीजर देखने के बाद मुझे एक ही चीज महसूस हुई, सब कुछ बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत पॉलिश्ड है, बहुत कैलकुलेटेड है, और स्पाई फिल्म्स कैलकुलेशन से नहीं केओस से याद रहती हैं। धुरंधर देखकर लगा था कि यार कुछ भी हो सकता है इस फिल्म में, अल्फा देखकर लगता है सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका है। और वैसे एक और सवाल है, फिल्म में शर्वरी भी है लेकिन टीजर देखकर तो ऐसा लगा जैसे उनका पासपोर्ट ही कहीं खो गया है। देखते हैं फिल्म क्या करती है, बिकॉज टीजर तो बस पहली झलक होती है। फिलहाल शर्वरी की जब बात चली ही है तो चलिए उनकी दूसरी फिल्म की तरफ। मैं वापस आऊंगा, AR रहमान जब नॉस्टैल्जिया को छू लेते हैं ना तो वो उसे म्यूजियम पीस नहीं बनाते, उसमें नई जान फूंक देते हैं। इश्क मस्ताना में 1940s के बिग बैंड जैज का रंग है, पंजाबी फोक की मिट्टी है, और मोहित चौहान की आवाज में वो खनक है जो सीधा हिट करती है। इट्स डेब्यूइंग ऑन नंबर 16, दिस इज इश्क मस्ताना by AR रहमान and Irshad Kamil.
1: Number 16.

हमने वही दिल लगाया। और इस गाने की तरह बॉलीवुड में भी कुछ ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जो अचानक वायरल नहीं होते, वो धीरे धीरे इंडस्ट्री का रूल बन जाते हैं। आज किसी भी बड़े हीरो को देख लीजिए, कॉकटेल में शाहिद कपूर है, जवानी तो इश्क होना है विद वरुण धवन, या फिर आने वाली कोई भी फिल्म, एक चीज ऑलमोस्ट नॉन नेगोशिएबल हो चुकी है, एब्स। कभी सिक्स पैक, कभी एट पैक, कभी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, तो कभी डाइट प्लान। आजकल रोल अनाउंस होने से पहले एब्स अनाउंस हो जाते हैं। और अगर पूछा जाए कि ये सब किसने शुरू किया था, तो जवाब बड़ा ही आसान है, ऑफ कोर्स मैन भाई, सलमान खान। लेकिन मुझे लगता है बॉलीवुड ने सलमान खान की लेगेसी का सिर्फ विजिबल हिस्सा अडॉप्ट किया, इनविजिबल हिस्सा तो छोड़ ही दिया। आज अहान पांडे को देखिए, नंबर 40।

0: द टाइटल सॉन्ग ऑफ सैयारा विच इज ऑन नंबर 14 एंड सैयारा के लिए अहान म्यूजिशियन बने। अली अब्बास जफर की एक्शन फिल्म के लिए अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया, हार्ड वर्क किया और ये जरूरी भी है। लेकिन सलमान खान स्टार सिर्फ इसलिए नहीं बने क्योंकि वो शर्ट उतार सकते थे, वो स्टार बने थे क्योंकि स्क्रीन पर उनमें एक वॉर्म थी, एक चार्म था, एक इमोशनल ऑनेस्टी थी। बॉडी अटेंशन जरूर लाती थी लेकिन इमोशन रिपीट वैल्यू लाता है। और शायद इसलिए सलमान के कुछ सबसे प्यारे परफॉर्मेंसेस वो हैं जहां लोगों ने उनके एब्स नहीं उनका दिल देखा, उनकी आंखें देखी। मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज फ्रॉम हम दिल दे चुके सनम, दिस इज कविता कृष्णमूर्ति एंड कुमार सानू, दिस इज आंखों की गुस्ताखियां।
1: टॉप 20 रीवाइंड।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 13.

0: वो नहीं, और इम्तियाज अली की फिल्मों की एक बात मुझे हमेशा पसंद आई है, उनके कैरेक्टर्स अक्सर किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं, प्यार का, खुद को ढूंढने का, या फिर एक मौके का। और शायद इसलिए मुझे एक और फिल्म उतनी ही एक्साइटिंग लग रही है, एक ऐसी फिल्म जो अभी रिलीज भी नहीं हुई है लेकिन जिसके आसपास एक अजीब सा बिलीफ बिल्ड हो रहा है। बंटवारा, जिसे हम पहले लाहौर 1947 के नाम से जानते थे। सोचिए, लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर खान ने एक्टिंग से ब्रेक लेने का फैसला कर लिया था, लेकिन जिस स्क्रिप्ट ने उन्हें वापस खींच लिया वो ये वाली थी। राजकुमार संतोषी, सनी दियोल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, ए आर रहमान, और फिर कुछ महीने पहले जावेद अख्तर साहब ने एक प्रिडिक्शन कर दी। सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं, अपनी रेप्यूटेशन दांव पर लगा दी।
1: एक प्रिडिक्शन में करना चाहता हूं, आई नो आई एम पुटिंग माय नेक आउट ऑन द ब्लॉक, मगर मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा वेन हूं। जैसे कि मेरे आमिर खान साहब जब ये भर रहे थे कॉन्टिन्यूटी बुक, तो मैंने कहा ये लड़का सुपर स्टार है। यही बात मैंने अमिताभ बच्चन, जिनकी 11 फिल्में फेल हुई थी, उनके बारे में कही थी, और अपने सारे एग्ज उस बास्केट में रखे थे। मुझे मालूम था ये बहुत सुपर स्टार, एक्सेप्शनल टैलेंट आदमी है। यही बात मैंने अनिल कपूर के बारे में कही थी और शंकर महादेवन के बारे में कही थी, और पिक्चरों के बारे में भी कही है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन राइट, इफ आई हैव नॉट लाइक द पिक्चर, दैट पिक्चर इज नॉट ट्रू। मैं आपको बताता हूँ, एक पिक्चर आने वाली है जो चाहे मल्टीप्लेक्स हो और चाहे ऑडियंस हो सिंगल, उसमें वो पिक्चर चलेगी और लोगों को पसंद आएगी। वो पिक्चर इस वक्त ये बना रहे हैं। मैं आई एम पुटिंग माय नेक ऑन द ब्लॉक। मुझे मालूम है कि आप लोग भूलेंगे नहीं, मगर जब मैं सही साबित हूँ तो सलाम करने आइएगा।
0: वाओ, मुझे नहीं पता बंटवारा ब्लॉकबस्टर होगी कि नहीं, मुझे ये नहीं पता कि ये इस साल की सबसे बड़ी फिल्म होगी कि नहीं, लेकिन जब इतने बड़े लोग एक ही कहानी पर इतना भरोसा दिखाते हैं तो क्यूरियोसिटी अपने आप बढ़ जाती है। और अब देखना यह है कि ये बिलीफ स्क्रीन पर भी उतनी ही मजबूत लगती है या नहीं। खैर, एक तरफ बंटवारा जैसी फिल्म है जो इतिहास के जख्मों को छूने जा रही है, और दूसरी तरफ बॉलीवुड का वो वर्जन भी है जो किसी भी मुश्किल सवाल का जवाब नाच गाने में ढूंढ लेती है। मिर्ची टॉप 20 पर अप नेक्स्ट ऑन नंबर 11 इज चुनरी चुनरी का रीमेक फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। नंबर 11।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 10.

जाइए सजना फ्रॉम धुरंधर बाय जैस्मिन सैंडलर्स। और जब भी मिर्ची टॉप 20 पर कोई नया गाना आता है, मेरा प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। पहले ऑडियो, सिर्फ ऑडियो, आंखें बंद करके। अगर गाना वहां काम कर गया तो फिर वीडियो देखने का मन करता है, और यही मैंने किया विद अ सॉन्ग फ्रॉम वेलकम टू द जंगल जिसका नाम है ऊंचा लंबा कद फॉरएवर। और मुझे मानना पड़ेगा विक्रम मॉन्ट्रोज ने इस रिक्रिएशन को एक इज्जत दी है। गाने में एनर्जी है, बीट एडिक्टिव है, और कम से कम ये अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वीडियो देखते ही एक और ख्याल आया यार, हम बॉलीवुड में अक्सर चेहरे याद रखते हैं लेकिन आवाजें भूल जाते हैं। और जो ओरिजिनल वाला ऊंचा लंबा कद है उसकी बात जब होती है तो लोगों को कटरीना कैफ याद आती है, अक्षय कुमार याद आते हैं, लेकिन उस गाने के असली आर्किटेक्ट आनंद राज आनंद। और शुक्र है कि इस नए वर्जन में उनकी आवाज को रिटेन किया गया है, वही आनंद राज आनंद जिन्होंने हमें दिए कुछ आइकॉनिक गाने।

0: रोमांस भी, दर्द भी और डांस फ्लोर भी। कितने कंपोजर्स ये रेंज क्लेम कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ देम वर चार्ट बस्टर्स। और हाँ, एक बात और है, दिशा पाटनी अपनी जगह एक स्टार हैं, लेकिन कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो किसी एक परफॉर्मर की याद के साथ परमानेंटली लॉक हो जाते हैं। और ऊंचा लंबा कद, वेल, वो कटरीना कैफ के नाम पर रजिस्टर्ड है। नंबर 9 पर डेब्यू हो रहा है इस गाने का, ऊंचा लंबा कद, फॉर एवर, फ्रॉम वेलकम टू द जंगल।
1: नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 8.

यार कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ गाने नहीं गाती, वो हमारी जिंदगी के अलग अलग चैप्टर्स में साथ चलती रहती हैं। सुनिधि चौहान उनमें से एक है, अरिजीत सिंह भी उनमें से एक है। लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जब अरिजीत अपना पहला बॉलीवुड गाना गा रहा था तब तक सुनिधि एक पूरी जनरेशन का साउंडट्रैक बन चुकी थी। मुझे आज भी मस्त का वो गाना याद है, वे आई हर्ड सुनिधि फॉर द फर्स्ट टाइम एंड माय माइंड वाज ब्लोन। रुकी रुकी थी जिंदगी, एक आवाज जो अलग थी, नई थी और बिल्कुल सुनिधि चौहान थी। फिर सालों बाद आए अरिजीत सिंह और धीरे धीरे वो आवाज बन गए। इसके बिना बॉलीवुड का रोमांस अधूरा लगने लगा। और जब ये दोनों एक ही गाने में मिलते हैं तो कुछ खास हो जाता है। और आज तुझको में आप उस जादू को महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए उनकी वोकल केमिस्ट्री का पीक आज भी ये गाना है।

सुनिए उस पल को। ना अरिजीत आगे निकलने की कोशिश करते हैं, ना सुनिधि, दोनों एक दूसरे को एलिवेट कर रहे हैं और शायद इसी को म्यूजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन अब मिर्ची टॉप 20 पर गाना नंबर 7, फिर वही आवाज, एक और एहसास। अरिजीत सिंह इज सोलो राइट नाउ, दिस इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। नंबर 7।

ये गाना खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होता, आप सोचते हो एक और बार सुनूंगा और फिर खुद को चौथी पांचवी बार प्ले करते हुए पकड़ लेते हो। और मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है इसका सिंगर राघव चैतन्य, क्योंकि कुछ सिंगर्स सुर में गाते हैं, कुछ सिंगर्स पर्सनालिटी में गाते हैं और राघव दूसरी कैटेगरी में आता है। सारी परतें हटा के सुनो, सिर्फ राघव की आवाज सुनो। पड़े अगर तेरे लिए

0: देखिए कैसे वॉइस को यूज कर रहा है ये लड़का। कभी ब्रीजी है, कभी फ्लर्टेशियस है, कभी ऑलमोस्ट कॉन्वर्सेशनल है, जैसे आपसे बात कर रहा हूं। गाना सिर्फ गा नहीं रहा, परफॉर्म कर रहा है, और शायद इसलिए प्रीतम दा बार बार उसकी तरफ लौट रहे हैं। इन एनिमल, इन मेट्रो, इन दिनों, इन कॉकटेल, इनफैक्ट राघव ने तो कई बार प्रीतम दा के गाने कवर भी किए अपने वीडियोस में।
1: इतनी

डूड इट साउंड सो लवली. पैटर्न साफ नजर आ रहा है. मिर्ची डॉट 20 पर नंबर 3 पर है तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला, जो कोविड के बाद अक्षय कुमार की सबसे कामयाब फिल्म है. लेकिन हम राघव चैतन्य की इस ट्रेन से उतरने नहीं वाले, क्योंकि माशूका से पहले एक और गाना था जिसने सबको पूछने पर मजबूर कर दिया, यार ये सिंगर कौन है. माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम एक विलन रिटर्न्स. दिल इश्क तो है बट साथ में दर्द भी. पिक ऑफ द वीक.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स

0: Hardy Sandhu and Kiran Bajwa have got a hit song to their credit. Wow! And अब जब है जवानी तो इश्क होना है थिएटर्स में एक हफ्ता बिता चुकी है तो मुझे लगता है कि फिल्म से ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका म्यूजिक, क्योंकि उस एल्बम में दो गाने ऐसे हैं जो पहले से ही सुपर हिट्स बन चुके थे, चुनरी चुनरी एंड देन इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो बीवी नंबर वन में था, इश्क चांदी है इश्क सोना है सोना बाबा सोना सोना सोना। वेल, मुझे लगता है कि बॉलीवुड का म्यूजिक एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। आज के कंपोजर्स को शायद लगता है कि लिसनर 3 सेकंड में शायद बोर हो जाएगा, इसलिए हर दूसरे सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा होता है गाने में, नई बीट, नया ड्रॉप, नया इफेक्ट, नई लेयर, और फिर गाना खत्म होने के बाद आपको गाना याद ही नहीं रहता। आप जरा ओरिजिनल वाला इश्क सोना है सुनिए।
1: इश्क़

यार क्या था इस गाने में? कुछ खास नहीं, और शायद वही इसकी खासियत है। मेलोडी को सांस लेने की जगह मिली, हुक को बैठने की जगह मिली। गाना आपका अटेंशन डिमांड नहीं कर रहा था, गाना आपको साथ ले जा रहा था। हर गाना लाउड होकर याद नहीं रहता, कुछ गाने चुप रहकर भी याद हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त बॉलीवुड में एक गाना इतना लाउड है कि उसके सामने सब पीके पड़ रहे हैं। 17 हफ्ते एट द नंबर 1 पोजीशन इज नो जोक एंड आई स्टिल फाइंड इट अनबिलीवेबल। और अब तो OTT पर भी हुड़दंग मचा रखा है, मैडनेस नजर आ रही है। दिस इज शरारत बाय मधुवंती बागची, जैस्मिन सैंडलास फ्रॉम धुरंधर, नंबर 1।

0: और बस इसी के साथ एक और एपिसोड, एक और काउंटडाउन और बॉलीवुड की एक और कहानी खत्म होती है। कुछ गाने इस हफ्ते चार्ट्स पर चढ़े, कुछ हिट कर गए और कुछ ने हमें याद दिलाया कि अच्छा म्यूजिक कभी पुराना नहीं होता। बट टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, अपनी प्लेलिस्ट को जिंदा रखिएगा और अपनी यादों को भी। दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: agent.
1: नमस्कार और गुड लक उन सबको जो मंडे का टेंशन सैटरडे रात को ही लेके घूम रहे हैं। ये है क्लब मिर्ची, जहाँ प्लेलिस्ट हॉट है, वाइब्स हॉटर है और आपके एक्स के एक्सक्यूजेस सबसे ज्यादा आउटडेटेड है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विथ यू, और अगले कुछ घंटों तक हम पार्टी करेंगे इतना जोर से कि पड़ोसी भी सोचे इनका वीकेंड पैकेज कौन सी कंपनी देती है। चलिए वॉल्यूम बढ़ाइए और शर्म घर पे छोड़ दीजिए। लेट्स गो।

वीकेंड और वाईफाई में एक सिमिलैरिटी है, दोनों जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो जिंदगी ऑटोमेटिकली बेटर लगती है. ऑल्सो विद क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका.

to Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi Oyontika. This is the sound of the future. अगर आप dance floor पे नहीं हो तो कम से कम imagination में तो हो, right? और अगर अभी भी sofa पे बैठे हो तो congratulations, आप officially furniture के साथ emotionally attached हो चुके हो. Get up, people!

मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं, कभी कभी सीन भी एक कंप्लीट पैराग्राफ होती है। डीजे मिर्ची और योंतिका आपके साथ और क्लब मिर्ची।

0: Mirchie, it's hot.
1: Ladies and gentlemen.

एनर्जी में वीकेंड का असली रूल सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। DJ Richard and Mirchi, all you on the go with you tonight on Club Mirchi.

इतना डांस करो कि स्मार्ट वॉच भी कंफ्यूज हो जाए कि वर्कआउट चल रहा है या सेलिब्रेशन। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑरियो विद योर क्लब मिर्ची।

कुछ लोग रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हैं, हम बस बेसलाइन फॉलो करते हैं। लाइफ थोड़ी सिंपल रखो यार, विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो अंकिका।

क्लब मिर्ची पे स्वागत है दोबारा। लाइफ अगर आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही है तो कोई बात नहीं, हम मिक्स्ड ट्रैक्स दे रहे हैं और हमारे ट्रैक्स कम से कम कमिटमेंट तो निभाते हैं। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका।

कुछ लोग थेरेपी अफोर्ड करते हैं, कुछ लोग शॉपिंग करते हैं, और हम बेस ड्रॉप का वेट करते हैं। हर किसी का हीलिंग प्रोसेस अलग होता है बॉस, इसीलिए क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो देखा।

0: मेरी टिप, अपने दोस्त को कभी मत बोलना मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। ये दुनिया के सबसे फिक्शनल स्टेटमेंट्स में से एक है।
1: डीजे रिचर्ड मिर्ची और योनिक आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची।

मिर्ची पे फिर से स्वागत। जो लोग बोलते हैं मुझे पार्टी पसंद नहीं है, उनको बस सही प्लेलिस्ट नहीं मिली अब तक, या फिर उनके दोस्त बहुत बोरिंग है, और दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वली डेंजरस है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर थिंग विद यू टुनाइट।

अगर आपका वीकेंड प्लान सिर्फ खाना सोना और ओटीटी था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आज रात हम आपके लिविंग रूम को अनऑफिशियल नाइट क्लब डिक्लेयर करते हैं। डीजे मिर्ची और योंतिका विद यू ऑन क्लब मिर्ची।

बाय द वे, अगर आपका रील्स बोरिंग लग रहा है तो थोड़ा डांस करो और हमें टैग भी करो ऑन डीजे रिचर्ड ऑफिशियल। कंटेंट भी बनेगा और कार्डियो भी। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन विद यू ऑन क्लब मिर्ची।

चटचट की बीट्स और आपकी वीकेंड एनर्जी का कॉम्बो डेंजरस है। मजेदार मोमेंट्स के लिए फॉलो करो @DJRichardOfficial and @OyoNtika AYANTIKA और देखो असली पार्टी का सिलेबस।

Welcome back to Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi Oyontika. This is the sound of the future. अगर आप डांस फ्लोर पे नहीं हो तो कम से कम इमेजिनेशन में तो हो, राइट? और अगर अभी भी सोफा पे बैठे हो तो कंग्रेचुलेशंस, आप ऑफिशियली फर्नीचर के साथ इमोशनली अटैच्ड हो चुके हो. गेट अप पीपल.

जी में वीकेंड का असली रूल सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची।

ड्राइव स्मार्ट। अगर स्टीयरिंग व्हील हाथ में है तो फोन को वेकेशन पे भेज दो। एक नोटिफिकेशन किसी की डेस्टिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। ओके, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोन पिकअप।

लगा के सुन रहे हैं, वॉल्यूम इतना मत बढ़ाओ कि मम्मी की आवाज और ट्रेन की हॉर्न दोनों म्यूट हो जाए। म्यूजिक एंजॉय करो, हियरिंग भी बचा के रखो। क्लब मिर्ची विद डीजे मैच्योर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका।

वीकेंड और वाईफाई में एक सिमिलैरिटी है, दोनों जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो जिंदगी ऑटोमेटिकली बेटर लगती है। ऑल्सो विद क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं, कभी कभी सीन भी एक कंप्लीट पैराग्राफ होती है। डीजे विचार मिर्ची और योतिका आपके साथ और क्लब मिर्ची।

दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, चाहे किसकी तलाश है वही।

0: क्लब मिर्ची पे फिर से स्वागत। जो लोग बोलते हैं मुझे पार्टी पसंद नहीं है, उनको बस सही प्लेलिस्ट नहीं मिली अब तक, या फिर उनके दोस्त बहुत बोरिंग है, और दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वली डेंजरस है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर थिंग विद यू टुनाइट।
1: एस्क फॉर मनी एंड गेट एडवाइस, एस्क फॉर एडवाइस गेट मनी ट्वाइस। आई एम फ्रॉम द डर्टी बट दैट चिको नाइस, यॉल कॉल इट अ मोमेंट, आई कॉल इट लाइफ।

कुछ लोग रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हैं, हम बस बेसलाइन फॉलो करते हैं। लाइफ थोड़ी सिंपल रखो यार, विद क्लब मिर्ची एंड जिंजर रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल।

वेलकम बैक। अगर आपका वीकेंड प्लान सिर्फ खाना सोना और ओटीटी था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आज रात हम आपके लिविंग रूम को अनऑफिशियल नाइट क्लब डिक्लेयर करते हैं। डीजे रिचर्ड मिर्ची ओयो दिखा हुआ।

0: They want them and I'm selling ya. They wanted to have coming with the new funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk. I like it.
1: रील्स बोरिंग लग रहा है तो थोड़ा डांस करो और हमें टैग भी करो डीजे रिचर्ड ऑफिशियल कंटेंट भी बनेगा और कार्डियो डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

गए हैं क्लब मिर्ची में। वीकेंड का असली रूल सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची।

रिचर्ड की बीट्स और आपकी वीकेंड एनर्जी का कॉम्बो डेंजरस है। मजेदार मोमेंट्स के लिए फॉलो करो @DJ Richard Official and @Oyontika Ayantika और देखो असली

शॉपिंग करते और हम बेस ड्रॉप का वेट करते हैं। हर किसी का हीलिंग प्रोसेस अलग होता है बॉस, इसीलिए क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो देखा।

0: इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर गोना गो
2: ऑन अ राइड
3: क्लब मिर्ची विद ओयंतिका एंड डीजे रिचर्ड ओनली ऑन

0: मिर्ची पे फिर से स्वागत। जो लोग बोलते हैं मुझे पार्टी पसंद नहीं है, उनको बस सही प्लेलिस्ट नहीं मिली अब तक, या फिर उनके दोस्त बहुत बोरिंग है, और दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वली डेंजरस है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर थिंग विद यू टुनाइट।
1: As for money and get advice, as for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

कुछ लोग रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हैं, हम बस बेसलाइन फॉलो करते हैं। लाइफ थोड़ी सिंपल रखो यार, विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल।

वेलकम बैक। अगर आपका वीकेंड प्लान सिर्फ खाना सोना और ओटीटी था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आज रात हम आपके लिविंग रूम को अनऑफिशियल नाइट क्लब डिक्लेयर करते हैं। डीजे रिचर्ड मिर्ची ओयोंटिका विद

0: They want them and not seven, y'all. They wanted to have coming with the new funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk. I like that.
1: रील्स बोरिंग लग रहा है तो थोड़ा डांस करो और हमें टैग भी करो डीजे रिचर्ड ऑफिशियल कंटेंट भी बनेगा और कार्डियो भी डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

वापस आ गए हैं क्लब मिर्ची में। वीकेंड का असली रूल सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची।

डीजे रिचर्ड की बीट्स और आपकी वीकेंड एनर्जी का कॉम्बो डेंजरस है। मजेदार मोमेंट्स के लिए फॉलो करो @DJ Richard Official and @Ayontika Ayantika और देखो असली

0: Mirchi. It's hot.
1: साथी रे थोड़ा ठहर जा।

Energy. It's hot.

0: 36 पे आएगी। रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain the Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
1: Devdutt ka day starter. Day starter.
3: तो आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। क्यों हनुमान? बिकॉज यू नो टुडे मॉर्निंग मैं सूर्य नमस्कार कर रहा था। डॉक्टर्स हैव टोल्ड मी कि सूर्य नमस्कार सुबह करना ही है बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट। और मैंने ये सुना है कि सूर्य नमस्कार वॉज डिजाइंड बाय हनुमान जी, और हनुमान जी ने ये सूर्य नमस्कार किया था क्योंकि उनके गुरु थे सूर्य भगवान। द सन वॉज हिज टीचर, हिज गुरु। तो एज ए दक्षिणा उन्होंने सूर्य नमस्कार की निर्माण की थी। तो जब मैं सूर्य नमस्कार आज कर रहा था तो हनुमान जी की याद आ रही थी, एंड आई सेड यू नो व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट द डे देन बाय डिस्कसिंग हनुमान जी के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में। क्योंकि देवदत्त पटनायक शो में हम क्या डिस्कस करते हैं? हम वेद पुराण, हमारे रीति रिवाज के बारे में डिस्कस करते हैं, यज्ञ हवन पूजा का डिस्कशन करते हैं, उत्सव के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारी कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आध्यात्मिक कल्चर है, जो भारत की एक परंपरा है, हमारी संप्रदाय है। एंड दीज थॉट्स इन अ वेरी पॉजिटिव सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्रूव कर सकता है। यू नो सूर्य नमस्कार फॉर एग्जांपल हेल्प्स आवर बॉडी, एंड यू नो यू लुक एट द मॉर्निंग राइजिंग सन एंड द सन इज टेलिंग यू गेट अप एंड मूव ऑन, एंड दैट्स व्हाट आई डू। सो आज पूरे दिन, आज पूरे शो में हम डिस्कस करेंगे हनुमान जी के बारे में, मारुति के बारे में, अंजनेय के बारे में, उनके अलग अलग कहानियों के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
0: माइथोलॉजी का वो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जो सबसे पहले हनुमान के मुंह से निकला, क्या था? बताएंगे देवदत्त।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
1: कल भी आज भी
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आज हम हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं और हनुमान जी की जब बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज जो हमारे मन में आना चाहिए इज अबाउट स्ट्रेंथ, बिकॉज हनुमान जी इज वेरी स्ट्रांग। यू नो, एक चीज हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वी हैव बिकम वेरी मॉडर्न। यू नो, आजकल लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, पहले जमाने में हम लोग बैकवर्ड थे, अभी हम यू नो वी हैव बिकम कूल बिकॉज हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास गाड़ियां हैं। बट यू नो, एक चीज कनेक्ट करता है सब कुछ। यू नो, कल भी आज भी सब समय इट ऑल टाइम्स देयर इज वन थिंग व्हिच कनेक्ट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य जो है ना वो असुरक्षित होता है, इनसिक्योर होता है, एंड वी आर ऑल इनसिक्योर। कुछ ना कुछ, जितनी अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग्स आर इनसिक्योर। और जब हम इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो भगवान की बात आती है, और हिंदू धर्म में हनुमान जी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि ही इज, जैसे बनारस में कहते हैं, वो संकट मोचन है। ही टेक्स अवे द प्रॉब्लम्स, हमारे जो असुरक्षता है ही टेक्स इट अवे, एंड ही इज अ वेरी यूनिक गॉड, बिकॉज एक बलवान तो है ही, उनके हाथ में तो गदा होता है एंड इज वेरी वेरी स्ट्रांग, बट एट अनदर लेवल ही इज ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल। वो कविताओं से जुड़े हुए हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि पहली बार संस्कृत शब्द उन्हीं के मुंह से निकला था। सो ही इज अ विद्वान एज वेल एज बलवान, एंड वी ऑलवेज ट्राइंग टू सेपरेट इट। हम हमेशा बोलते हैं कि जो बलवान होता है वो विद्वान नहीं हो सकता, और जो विद्वान होता है वो बलवान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यू कैन गो टू द जिम एंड बी यू नो स्ट्रांग एंड डू एक्सरसाइज एंड बी गुड इन स्पोर्ट, बट यू कैन ऑल्सो बी गुड इन स्टडीज, एंड यू कैन बी अ स्मार्ट गाय, यू कैन गो टू द बेस्ट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, बिजनेस। यू नो, हम ये डिवाइड करते रहते हैं दुनिया को, और आई थिंक ये आइडिया है। मैं जब भी हनुमान के बारे में सोचता हूँ मैं बोलता हूँ कि कल भी वो रेलिवेंट थे, आज भी वो रेलिवेंट हैं, क्योंकि वो बलवान विद्वान हैं, वो हमारे भीतर के पशु को जागृत करते हैं, रिमाइंड्स अस दैट देयर इज एन एनिमल इनसाइड अस, और हमें मनुष्य बनना है। यू नो, ही इज अ वानर, वन का नर। मीन्स सम पीपल से इट इज मंकी, सम पीपल से इट इज एप लाइक मैन, सम से इट इज अ ट्राइबल पर्सन, लेकिन क्या है कि ये एक कॉन्सेप्ट है। आर जर्नी, हमारी जो यात्रा है, इज फ्रॉम पशु टू पुरुष एंड टू बिकम बलवान एंड विद्वान। ऐसे ही बातें हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। स्टे ट्यून्ड बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टोरीज आर कमिंग योर वे। वी आर गोइंग टू डिस्कस हनुमान जी के स्टोरीज, नॉट जस्ट फ्रॉम रामायण बट फ्रॉम मेनी फोक ट्रेडिशंस। तो स्टे ट्यून्ड।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान ने कैसे तोड़ा रावण का घमंड, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: गायत्र्यास्तु परम नास्ते, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है, उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरणम्।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि माम शरणागतम। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौर मंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। माय फेवरेट हनुमान स्टोरी इज जब हनुमान रावण को मिलता है लंका में, एंड दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी। तो रावण इज द किंग ऑफ लंका, राक्षसों के राजा हैं, ही इज एजुकेटेड, ही नोज नाट्य शास्त्र, उन्हें गंधर्व विद्या, उनको वेदों का ज्ञान है, उनको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, वास्तु शास्त्र का ज्ञान है, ही इज एजुकेटेड एंड इज वेरी पावरफुल। उनके पास पुष्पक विमान है, वो सोने के लंका में राज करते हैं, और उनको पता चलता है कि उनके अशोक वाटिका में एक बंदर ने कुछ तो गड़बड़ किया है, और बंदर को पकड़ के लोग लेके आ रहे हैं। एक बंदर कौन है? और जब बंदर आता है उसके सामने, वो बंदर संस्कृत में बात करता है उनके साथ, एकदम परफेक्ट संस्कृत में बात करता है। तो ही शॉक्ड बिकॉज संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है, विद्वानों की भाषा है, ये बंदर कैसे बात कर सकता है? और फिर वो कहता है, बंदर बहुत डेंजरस शब्द बोलता है, कि कहता है कि मैं राम का दूत हूं, आई एम अ मैसेंजर ऑफ राम। तो अगर मैं दूत हूं तो यू शुड ट्रीट मी लाइक अ दूत, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। आप मुझे बांध के लाए हो यहाँ पे, मुझे एक आसन दीजिए, मेरा सत्कार कीजिए, ताकि मैं आपको एक मैसेज दे सकूं। और रावण कहता है कि बंदर, दूत, राम, ये कौन है? एंड ही इज लाइक क्वाइट डिस्गस्टेड, बहुत डिसमिसिव होता है कि चल अपने आप को समझ रहा है राम दूत। तो हनुमान जी बोलते हैं कि देख, कोई भी तुम्हारे घर में आता है ना, तुम उसे सत्कार करते हो, इंसल्ट नहीं करते हो, मैं तुम्हारे घर पहले बार आया हूँ, यू शुड ट्रीट मी नाइसली। और अगर तुम, यू डोंट ट्रीट मी नाइसली, मेरा इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लूंगा, तुम अगर मुझे आसन नहीं दोगे तो मैं अपने आप को आसन दे दूंगा। और अपनी पूंछ से वो एक आसन बनाते हैं, और एक ऐसे आसन बनाते हैं जो रावण के सिंहासन से ऊपर होता है। मतलब रावण जो हमेशा सब लोगों को नीचे देखता है, वो हनुमान जी को ऊपर देखता है, और उसका घमंड वहां पे इज डिस्ट्रॉयड, कि ये बंदर संस्कृत बोलने वाला उसको एक सेकंड में बताता है कि भैया तेरी औकात क्या है। ये जो स्टोरी है ना, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, लेकिन सबको समझ में आता है। बताने से पता चलता है कि रावण हमारी जिंदगी में बहुत, रावण होते हैं, हम भी रावण होते हैं, सबको, हम चाहते हैं कि सब हमारे नीचे बैठे रहें, हम लोगों को, वी जज पीपल कि कैसे लोग होने चाहिए, बट सामने वाला हनुमान हो सकता है और वो हमें औकात दिखा देगा बहुत ही शांति से। और ये कहानियों में से ऐसी छोटी छोटी ज्ञान मिलती है, हमारा जो संस्कृति है, भारत धर्म है, हमारा जो कल्चर है, वो कहानियों के माध्यम से आता है। जैसे एक छोटी सी एपिसोड रामायण की, हनुमान जी और रावण के बीच में। एंड ऐसे ही स्टोरीज आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची, तो स्टे ट्यून्ड।
2: हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान को डिस्कस कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉड्स इन हिंदुइज्म।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो,
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: गांव गांव में उनकी मूर्तियां होती हैं, पूजा होती है। सो इफ आई एम श्योर यू हैव मेनी क्वेश्चंस ऑन हनुमान, तो जो भी क्वेश्चन है प्लीज पिक अप द फोन एंड आस्क मी द क्वेश्चन। आई एम एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू। हेलो, देवदत्त हियर।
3: हाय, माय नेम इज अक्षता एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई। मेरा क्वेश्चन ये है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या?
0: थैंक्स अक्षता फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जो सिंदूर है, लाल रंग जो होता है, ये भारत में इसे मंगल मतलब ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है, ऑस्पिशियस कलर माना जाता है, और हनुमान जी को हम मंगल मूर्ति भी मानते हैं। सो इट इज़ अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस, इसलिए उनको लाल रंग दिया जाता है। गणपति जी को भी मंगल मूर्ति मानते हैं, इसलिए उसके लाल रंग दिया जाता है। सो लाल रंग मांगल्य, मांगल्य इज प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस, गुड लक, चार्म, तो ये देवी के साथ जुड़ा हुआ है। और नॉर्मली लाल रंग हम देवी को जोड़ते थे, और बोथ गणेश एंड हनुमान आर लिंक टू द शाक्त परंपरा, और इसलिए हनुमान जी की मूर्ति को मांगल्य बनाने के लिए, नहीं तो वो बहुत ही यू नो वेरी मैस्कुलिन इमेज जो है, वायलेंट इमेज है, बिकॉज उसके हाथ में वेपन्स हैं एंड ही इज फाइटिंग। लेकिन जब आप लाल लगाते हो तो वो शुभ बन जाता है, दैट इज द रीजन। आजकल लोग ऑरेंज कलर दे रहे हैं जो वैरागियों का रंग है, लेकिन मंगल रंग इज लाल, इसलिए शादी का जोड़ा भी लाल होता है, चूड़ियां लाल होती हैं, दैट इज द रीजन। ऑफ कोर्स देयर आर स्टोरीज कि उन्होंने देखा कि सीता जी लाल रंग सिंदूर डाल रही हैं, इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर को ढक दिया, ये सब लोक कथाएं हैं। लेकिन क्रियाओं के तरफ, फ्रॉम रिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, लाल जहां लगा जाएगा, जैसे अलता होगा, ये होगा, इसे मंगल का शुभ है, शाक्त सिंबल है, देवी का चिन्ह है। That is the purpose.
3: All right. Thank you so much for the answer. Thank you.
0: Welcome, Akshata. तो अक्षता का क्वेश्चन वॉज अबाउट सिंदूर रंग, और ये लाल रंग जो होता है ये ट्रेडिशनल कलर है जो हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है। नॉर्मली जो मेल गॉड्स होते हैं उनको लाल रंग वेरी रेयरली दिया जाता है, क्योंकि हनुमान जी को देवी का सेवक माना गया है, वो प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं, इसलिए लाल रंग दिया जाता है।
2: क्या है हनुमान और पंचमुखी हनुमान में अंतर, बताएंगे देवदत्त। Keep listening.
4: Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi, it's hot.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
1: द देवदत्त पटनायक शो।
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: सो नाउ आई वांट टू डिस्कस माय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमेजेस ऑफ हनुमान, जो पंचमुखी हनुमान जिसके कहते हैं। तो पंचमुखी हनुमान की मूर्ति अगर आप देखे होंगे तो इट इज नॉट, यू नो, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टैचू। नॉर्मली हनुमान जी की मूर्ति राम के मंदिर में होती है और वो वहां पे एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं राम के चरण पे। लेकिन पंचमुखी हनुमान जो होता है वो मंदिर में केवल हनुमान जी की मूर्ति होती है वो, और उनके दो हाथ नहीं, उनके 10 हाथ होते हैं, और उनके एक सर नहीं, 5 सर होते हैं, और एक ही सर वानर का रूप लेता है। बाकी 4 जो है, एक घोड़े का होता है, एक शेर का होता है, एक वराह या जंगली सुअर का होता है, और एक गरुड़ का होता है। पंचमुखी हनुमान की स्टोरी हमें अद्भुत रामायण से आती है। अद्भुत रामायण में कहते हैं कि राम गेट्स डिसअपियर्स और उसे पाताल लोक में कोई लेके चला जाता है, और हनुमान जी हैज नाउ टू डू एवरीथिंग एंड फाइंड रेस्क्यू राम। तो स्टोरी है, हाउ डज हनुमान गो टू पाताल लोक। इसलिए पंचमुखी हनुमान को कभी कभी लोग पाताली हनुमान भी बोलते हैं, और पाताली हनुमान कुछ मंदिरों में उन्हें अपसाइड डाउन रखा जाता है बिकॉज वो पाताल में गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग, ये पंचमुखी क्यों बने हैं? क्योंकि हनुमान जी वहां पे डिस्कवर्स कि वो केवल वानर नहीं है, उनके अंदर बहुत क्षमता है। वो गरुड़ के जैसे भी काम कर सकते हैं, वो वराह के जैसे काम कर सकते हैं, वो शेर की भांति काम कर सकते हैं, वो घोड़े के जैसे भी काम कर सकते हैं। उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं, ये मूर्ति है दिखाने के लिए कि जो एक वानर है वो महाबली कैसे बना। सो रामदास से महाबली की यात्रा, द ट्रांसफॉर्मेशन, जो सिंपल एक रामदास था जो इंस्ट्रक्शंस लेता था, वो कार्य करता था, जो राम बोलते थे वो करते थे, लेकिन पंचमुखी हनुमान के जगह में वो कर्ता बन जाते हैं। ही इज द पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव, ही सॉल्व्स प्रॉब्लम्स, और अंदर की अपनी जो पोटेंशियल है डिस्कवर करते हैं। आई एम श्योर आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है टू डिस्कवर, एंड यू मस्ट फाइंड दिस पोटेंशियल सो दैट द होल डे यू फाइंड द हनुमान इनसाइड यू एंड क्रॉस द ओशन टू सक्सेस। So, best wishes and stay tuned for more interesting questions and answers and stories on the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
3: हमें ही नहीं हनुमान को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। कब और क्यों बताएंगे देवदत्त।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। यू नो, मैं हनुमान के बारे में बहुत लिखा हूँ मेरी किताबों में, मेरे एसेज में। मैंने हनुमान चालीसा के ऊपर एक किताब लिखी है, माय हनुमान चालीसा, जहाँ पे यू नो हर जो दोहा चौपाई उसके अंदर इतना ज्ञान है हनुमान जी के कथाओं में कि हर लाइन में ज्ञान होता है, एक आइडिया होता है, एक थॉट होता है, एक विश, यू नो, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हनुमान जी के माध्यम से हमें कितनी चीजें बताई जा रही हैं। सो मेनी आइडियाज आर बीइंग प्रेजेंटेड टू अस। और ऐसे स्टोरीज जब आते रहते हैं तो एक स्टोरी है यू नो विच इज यू नो लिंक्ड टू हनुमान, विच यू नो ऑलवेज रिमाइंड्स मी दैट भगवान भी कितने हम्बल होते हैं हमारे सामने। कहते हैं कि जब हनुमान जी यू नो लंका के लिए जा रहे थे, देन ही वाज यू नो वो शोर ऑफ समुद्र के बगल में थे और सब बोल रहे थे, ऑल वानर्स वर गैदर्ड ओवर देयर, सामने समुंदर दिखाई दे रहा था, द ब्लू सी स्ट्रेचिंग अक्रॉस, कहीं बियॉन्ड होराइजन में सोने की लंका थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कितने दूर है होने वाला है ये। तो सब वानर बोल रहे थे इतना दूर तो हम छलांग नहीं मार सकते, कोई बोल रहा था मैं इतना योजन मींस इट्स अ मेजरमेंट टूल कि कितने माइल्स होते हैं यू नो, तो योजन कितने योजन तुम जा सकते हो। सो कोई बोल रहा था मैं 10 योजन जा सकता, कोई 50 योजन। तो हनुमान कुछ नहीं बोल रहा था, चुप बैठा था। तो जांबवन जो बैर जो भालू थे वो जाके हनुमान जी से पूछते हैं कि तू कितना कर सकता है, एंड हनुमान से मुझे पता नहीं मेरे में कितनी ताकत है। इमेजिन हनुमान जी बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, ही इज फुल ऑफ डाउट। एंड दैट टाइम हनुमान जी को जांबवन उनका वर्णन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और बोलते हैं कि आप कितने महान हो, डू यू नो हाउ ग्रेट यू आर, आप शिव जी के एक अवतार हो, आप सूर्य भगवान से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, वायु आपके पिता हैं, तो यू हैव ऑल द विजडम, आप प्रिय हो राम जी के, उन्होंने आपको भाई जैसे माना है। सो इतना स्ट्रेंथ है, सो ही कीप्स प्रेजिंग हिम एंड कीप्स प्रेजिंग हिम। एंड हनुमान जब ये सुनते हैं, ही स्टार्ट्स ग्रोइंग इन साइज, ही बिकम्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर, ही बिकम्स सो बिग कि उनकी जो सर बोलते हैं कि इट गोज बियॉन्ड द स्काई, इतने लंबे हो जाते हैं, पहाड़ भी उनके सामने छोटे छोटे दिखने लगते हैं। एंड देन वो छलांग मार के जाते हैं लंका के तरफ। और मतलब हनुमान जी को भी टू डिस्कवर हिज पावर्स कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है। एंड वी ऑल हैव अ हनुमान इनसाइड अस, हम सबको मोटिवेशन चाहिए। यू नो लोग हमेशा हमें हमारी नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं कि अरे तू ये नहीं करता है, तू वो नहीं करता, तू ये नहीं करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो हमें पॉजिटिव पॉइंट्स देते हैं। यू नो भगवान की जब आरती जब हम करते हैं, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चालीसा में देखिए भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं, वैसे ही जब हम आरती करते हैं तो भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं। मतलब हर आदमी को आरती पसंद है, थोड़ा एक आध बार मेरे जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको आप प्लीज वर्णन कीजिए। टेल योर फ्रेंड्स दैट दे आर गुड एट मे बी इन पोएट्री, मे बी दे आर गुड एज क्रिएटिव पीपल, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज, दे ड्रेस वेल, छोटी छोटी बातें उनके अंदर जो हनुमान है उसे जागृत करते हैं। आई थिंक दैट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ हनुमान बिकमिंग लाइक अ सुपरमैन, जंपिंग अक्रॉस द स्काइज एंड गोइंग टू सोने की लंका। तो ऐसे ही आइडियाज हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान की जाति से जुड़ा एक और सवाल जब उठा तो क्या कहा देवदत्त ने? कीप लिसनिंग।

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे। सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान। पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: हेलो देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: Hi.
3: Hi, मेरा नाम भास्कर है and I'm a huge fan of yours.
0: Thank you so much.
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके।
0: तो
3: हनुमान जी की जाति को लेके कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचे की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है। एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पोलिटिकल गेम्स दैट आर बींग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे। जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं, मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज़्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। वी डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस जाति, सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडियंस एंड दैट्स माई सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है, जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
1: ऑन रेडियो मिर्ची
2: द देवदत्त पटनायक शो। क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। शो अभी खत्म होने वाला है। और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है, जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज यू नो अ गॉड हु इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी के वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते रहे। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi devdutt ऑन मिर्ची और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: On Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik Show. The views expressed in the Devdutt Patnaik Show are the hosts alone, not the channels.

पे बैठा जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले, इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो बैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

0: गुड़ बॉय बन जाता हूँ।
1: उड़ती है खबरें लेता ना स्ट्रेस, गेम का कार्ट ऑन टू द नेक्स्ट, प्लेन है प्राइवेट लाइफ है प्लस, मुट्ठी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, ना मुझे ऐसे मस का लगा, रही ना किसी काम धाम की जब से लड़की को चस्का लगा मेरा।
2: नानी और नानी का घर हमेशा एक जैसे नहीं रहते।
3: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
4: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ये बात हमने कभी बचपन में सोची नहीं ना कि जो हम इतनी सारी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने जैसी चीज नहीं है, क्योंकि ये हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। नानी का घर हमेशा नहीं रहता है। एक टाइम ऐसा आता है कि ना नानी होती है और ना वो घर घर जैसा लगता है, फिर वहां जाने का मन भी नहीं करता है। दुनिया कितनी बदल जाती है ना यार। और आप बोलोगे सारा ऑल ऑफ अ सडन ये क्या इतनी इमोशनल बातें कर रही हो तुम। एक्चुअली हुआ क्या ना कि कल मैं कैफेटेरिया में बैठी हुई थी एंड मेरे बाजू वाली जो टेबल थी वहां पर एक नानी और नवासी की जोड़ी आके बैठी और उनका कॉन्वर्सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। एंड सिंस वो लोग अपने ऑर्डर के लिए वेट कर रहे थे और बातें कर रहे थे, तो ऑफकोर्स वो बातें मुझे भी सुनाई दे रही थी क्योंकि वो तो मेरी बगल वाली सीट पर ही बैठे हुए थे ना। तभी नानी जो थी वो अपनी नवासी को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि भाई तुम कुछ लेने की बात करो, किसी चीज पर राजी हो तो मैं तुम्हें दिलाऊं भी, तुम हो कि किसी चीज के लिए हाँ ही नहीं बोलती हो। और जो नवासी थी ना वो बिल्कुल चिल सीन जेंजी नवासी, शी वाज लाइक नानी मुझे कुछ नहीं चाहिए। एम देर आई रियलाइज्ड कि हमारी जनरेशन और आज की जनरेशन में कितना फर्क हो गया यार। मतलब हमें अगर कुछ दिया जाता था वो भी बिना पूछे तो हम नाना करते हुए हाँ कर लिया करते थे यार, क्योंकि उस ना में हाँ ही होती थी। एंड आज आई डोंट रिपेंट दैट बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये जो सारे मौके हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी सिचुएशंस हैं, ये हमेशा नहीं रहती। हमें तब ऑफकोर्स नहीं पता था कि नानी और नानी का घर हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन आज जो हमने लम्हे जी लिए अपनी नानी के घर में, उन्हें जीने के बाद तो लगता है कि जो किया अच्छा किया। कितनी सारी यादें हैं नानी के घर की, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए नानी के घर की यादों को ताजा किया जाए। तो चलो जी, मिड डे मोहब्बत की गाड़ी 90s के गियर में डाल चुकी है और मैं आपसे कह रही हूँ यू स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट। सारा जमाना
1: सारा का दीवाना, मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: आज अगर मुझे कोई चॉइस दे और मेरे पास ऑप्शन हो कि यार सारा तुम क्या चूज करोगी, कश्मीर या स्विट्जरलैंड की वादियों में खो जाना, वहां पर ट्रैवल करना, या फिर अगर तुम्हें मौका दिया जाए कि तुम बचपन के टाइम में नानी का घर विजिट कर पाओ, तो तुम कौन सा ऑप्शन प्रेफर करोगी? एंड ऑफ कोर्स आप मेरा आंसर जानते हो।
3: नब्बे की गप्पे।
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और नानी का घर वो घर हुआ करता था जो कि हमारे घरों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब वहां पर वो सब कुछ था जो हमारे घर में नहीं था, एंड दैट इज नानी का प्यार, ननिहाल का दुलार, जो आज हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं। बड़े होने का मुझे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही लगता है कि वो लाड प्यार दुलार जो है वो कहीं चला गया। नाउ हमने अपनी सीट्स बदल ली हैं और हम वो जगह पर आ गए हैं जहां पर हम ननिहाल का प्यार प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाय हमारे दिन कहाँ चले गए यार। लेकिन नानी के घर में मुझे वो टाइम याद है जब खाना खाना नेवर यूज टू बी अ टफ जॉब, ना हमारे लिए और ना ही हमारे पेरेंट्स के लिए। हमें खाना खिलाना बहुत बड़ी जॉब हुआ करती थी यार। मतलब आज के टाइम पे व्हेन आई सी माय नीसेस एंड नेव्यूज, उनको खाना खिलाना कितना बड़ा काम हो जाता है। एक दो घंटा तो लग ही जाता है यार, वो भी टीवी और मोबाइल के जरिए उनको खाना खिलाया जाता है। ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ उन लोगों ने खाना खाना सीखा है। हमारे साथ कभी ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ करता था यार। हम तो सारे के सारे कजन एक पंगत में बैठ जाया करते थे, दस्तरखान लगता था, उसके ऊपर खाना लगता था और सारे के सारे साथ में बैठ के एक दूसरे को देखकर खा लिया करते थे। कभी नहीं सोचते थे और क्वेश्चन करते थे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खाना है, वो नहीं खाना है। जो सब खा रहे वही हम खा रहे होते थे। इनफैक्ट जो खा रहे होते थे उसमें हम कॉम्पिटिशन भी लगा रहे होते थे कि कौन सबसे ज्यादा रोटियां खा पाता है, कौन सबसे ज्यादा गुलाब जामुन खा पाता है, आज देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा भुज्जे खाता है कड़ी में। और कभी कभी तो हम इस चीज की भी कंपटीशन लगा लिया करते थे कि लेट्स सी कौन कितने ज्यादा ग्लास पानी पी लेता है। इसी कंपटीशन को जीत जीत कर या फिर उसमें कभी हार हार के हम पल बढ़ गए। कभी खाना हमारे लिए टफ जॉब हुआ ही नहीं, एंड आई थिंक दैट इज वन बिग रीजन कि आई एम अ बिग फूडी। नाउ आई लाइक एवरीथिंग, कुछ भी खिला दो मैं शौक से खा लूंगी, उसके अंदर स्वाद और प्यार भरा हुआ होना चाहिए। नानी के घर की कुछ बातें अलग थी और वही बात आज मिड डे मोहब्बत पर हो रही है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हमारे घरों में ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम इस तरीके के नाम दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट रूम्स को, लेकिन नानी के घर का आर्किटेक्चर वॉज वेरी डिफरेंट।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज इस पिटारे में से नानी का घर निकल के आया है, जो कि हम सब के दिल के अजीज चीज है। एंड नानी के घर में ना कमरों के नाम हुआ करते थे, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, नहीं, इतने पॉश नेम नहीं हुआ करते थे। नानी के घर में कमरों के नाम हुआ करते थे, जहाँ टीवी रखा है वो टीवी वाला कमरा, जहाँ फ्रिज रखा है वो फ्रिज वाला कमरा, जहाँ अनाज रखा है वो गेहूं वाला कमरा, और जहाँ बिस्तर रखे हैं वो बिस्तर वाला कमरा। इन सभी कमरों में खेल कूद कर हम पले बड़े हैं, और बड़े होने के बाद जब नानी के घर में अब जाते हैं ना, तो आज भी हम उन कमरों को उसी नाम से बुलाते हैं, भले ही आज उनके नाम अलग हो गए हो। कि ये चिंटू का कमरा है, वो बिट्टू का कमरा है, या ये ड्राइंग रूम है और ये लिविंग रूम है, ना जी, हमारे लिए तो आज भी वो टीवी वाला, फ्रिज वाला, अनाज वाला कमरा है। आज उसका नाम बदलने का हमारा दिल बिल्कुल नहीं करता, बिकॉज ये सिर्फ नाम नहीं है भाई, नॉस्टैल्जिया है, यादें हैं बचपन की। जो नानी तो चली गई, लेकिन उनके घर से ये यादें इन नामों के साथ आज भी जुड़ी हुई है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बड़े अजीब बात है यार, बचपन में जिस कार्टून कैरेक्टर को देख देख कर बड़े हुए उसको उस जमाने में तो सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर ही समझा करते थे, और हाँ पसंद भी बहुत आया करता था, इम्प्रेसिव बहुत था। लेकिन आज उसी कार्टून कैरेक्टर को जब मैं सोचती हूँ ना तो लगता है कि हाय काश कि मैं यही कार्टून होती लाइफ में।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and the cartoon character that I'm talking about is Richie Rich। याद है आपको? यार बचपन में जब इस कैरेक्टर को देखा करते थे ना तो इम्प्रेस तो मैं होती थी ये देखकर कि हाय क्या लाइफ है यार, क्या घर है, क्या गाड़ियां हैं, फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां होती थी बंदे के पास, क्या क्या गैजेट्स हुआ करते थे, क्या बंगला था उसका। लेकिन हमें तब भी ना सबसे अच्छी बात रिची रिच की लगती थी कि ये हमेशा सही का साथ देता है। एक अमीर लड़का होकर भी ना उसमें एक मासूम बच्चा छुपा है जो दोस्ती और इंसानियत में यकीन रखता है। आज मुझे उस रिची रिच के अंदर पता है क्या नजर आता है? सिर्फ और सिर्फ ये बात, यार क्या मस्त लाइफ है यार इसकी, क्या करना है इसको, अच्छा ही तो होना है ना सबके साथ। दैट्स सो सिंपल, मेरे पास इतना पैसा आ जाए ना तो मैं भी इतनी अच्छी हो जाऊँ सबके साथ। Which is not really easy जब आपके पास इतना पैसा आ जाता है तो, because लालच भी तो बुरी बला होती है और तभी ऊपर वाला आपको टेस्ट कर रहा होता है। But nevertheless मेरे को तो यही लग रहा होता है कि यार काश काश की लाइफ में और कुछ ना करना होता और सिर्फ रिची रिच का रोल प्ले करना होता तो मैं तो तैयार थी फौरन से ये काम करने के लिए। आप बताओ, आपको रिची रिच इसी वजह से आज ज्यादा पसंद आता है या बचपन में ज्यादा पसंद आया करता था? DM करो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: यार हम सब ने ये तो एक जमाने में पूछा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन हमने ये कभी नहीं जानने की कोशिश करी कि यार गजनी मूवी के अंदर कल्पना संजय सिंघानिया की आइडेंटिटी जाने बगैर ही मर गई। भाई ये हमारे लिए एज एन ऑडियंस तो बहुत ही दर्दनाक बात थी, और इस बात के पीछे जो वजह थी वो आज जाके पता लगी है।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, इस फिल्म के डायरेक्टर A.R. मुर्गा दोस्त ने बताया कि यार इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते टाइम एक्चुअली जब उन्होंने ये अपने आप से सवाल किया कि व्हाट इफ अगर कल्पना को संजय सिंघानिया की असलियत पता लग जाती है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, इवेंचुअली ही अराइव्ड टू द कंक्लूजन कि यार अगर उन्होंने इस स्क्रिप्ट के अंदर ये एडिशन कर दिया ना कि हाँ कल्पना को संजय सिंघानिया यानी कि आमिर खान के बारे में असीन को सब कुछ पता लग जाता है तो यार मजा चला जाएगा इस फिल्म के अंदर से। मजा तो वही था जहां कल्पना को ये बात नहीं पता थी कि संजय सिंघानिया आखिर हकीकत में है कौन, और कल्पना का वो जो जेस्चर था ना कि वो इतनी मासूमियत से संजय सिंघानिया जो इतना मिलियनर और मल्टी मिलियनर इंसान है उसको उसके पैसे भी लौटा रही है, इतनी सच्चाई से उसके साथ बिहेव कर रही है और बहुत ही बेसिक बातों को लेकर खुश हो रही है, वही वो सारी चीजें थी जो संजय सिंघानिया यानी कि आमिर खान का कैरेक्टर जो था उसको पसंद आई थी अबाउट कल्पना यानी कि असीन। और यही वो सारी बातें थी जो इस कैरेक्टर को लेटर ऑन याद रही आफ्टर ही फॉरगॉट एवरीथिंग इंक्लूडिंग हिज नेम, हिज फेम, हिज मनी, हिज हाउस, ही फॉरगॉट एवरीथिंग बट जस्ट दैट गर्ल। और ये वही फील था, वही इमोशन था जिसको वो टैप करना चाह रहे थे, लेकिन अगर कल्पना को संजय सिंघानिया के बारे में पता लग जाता तो ये इमोशन इतना अग्रेसिवली निकल के नहीं आता क्योंकि वही चीज बार बार आमिर खान के कैरेक्टर को हिट कर रही थी। एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि उन्होंने इस चीज को वहीं छोड़ दिया। इनफैक्ट द रीजन कि आज आप और मैं इस बात को डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपको ये चीज बता रही हूँ स्पीक्स अ लॉट अबाउट द फैक्ट कि उन्होंने सही किया कि संजय सिंघानिया की आइडेंटिटी कल्पना से हमेशा के लिए छुपाई ही रखी, वरना हम भी कहाँ इस बात के बारे में बात कर रहे होते। You tune in with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तबू और अजय देवगन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हकीकत। उसका एक ऐसा गाना था जिसे कि हमें बचपन में सारे बड़े टोका करते थे गाने के लिए कि नहीं नहीं ये गाना नहीं गाना है, ये अच्छी बात नहीं होती है जो इस गाने में कही गई है।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और इस गाने में क्या कहा गया था यार, बस यही तो कहा गया था। लेकिन मुद्दा ये नहीं है आज के टाइम पर, ये तो हमारे बड़ों का मुद्दा हुआ करता था। मुद्दा तो ये है कि ये जो कहा गया है, ये गाया गया है, जो म्यूजिक है ना, ये ओरिजिनल नहीं है बॉस, क्योंकि ये तो कॉपी की गई है फ्रॉम एन इंग्लिश बैंड जिसका नाम था द चैम्प्स, और उनका 1958 में रिलीज हुआ ये गाना टकीला इज एक्चुअली द ओरिजिनल म्यूजिक, जहां से इस गाने की इंस्पिरेशन या कॉपी व्हाटएवर वी वांट टू से एंड व्हाटएवर वी फील अबाउट इट की गई है। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है ना कि 90s की कोई फिल्म है या कोई गाना है जो कहीं से कट कॉपी पेस्ट किया गया, तो फॉरन डीएम करिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड रहिए विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: क्या आपको लगता है इग्नोरेंस इज ब्लिस?
1: सारा ज़माना ऐ सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हम जैसे जैसे बड़े होते गए ना, जैसे जैसे चीजें हमारे आगे अनफोल्ड होती गई हैं, वैसे वैसे हम समझदार होते गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार कि हर एक चीज पता होनी भी क्या ही जरूरी है। कुछ चीजों की सच्चाई जब नहीं पता होती ना, तो एक होप जरूर होती है। मैं ना आपसे अपने बचपन की एक बात शेयर करती हूँ। बचपन में माई फादर यूज टू टेल मी अबाउट अ फेरी गॉड मदर हु ऑफ कोर्स डिड नॉट एग्जिस्ट। लेकिन गुड, ये बात मुझे नहीं पता थी, क्योंकि जब मुझे ये पता था कि आई हैव अ फेरी गॉड मदर, आई यूज टू फील वेरी सिक्योर, वेरी प्रोटेक्टेड। और मेरे डैडी वो रात में ना मुझे फेरी गॉड मदर के नाम पर दूध पिला दिया करते थे, सोने से पहले चेंज करके ब्रश करके सोने की आदत दिला दिया करते थे, और अक्सर सुबह मुझे मेरे तकिए के नीचे कभी गिफ्ट्स तो कभी चॉकलेट्स मिला करती थी। थैंक्स टू फेरी गॉड मदर, यू नो आई स्टिल वुड वॉन्ट टू बिलीव इन अ फेरी गॉड मदर। लेकिन आज कुछ ज्यादा ही जागरूक हो गए ना, हेंस इग्नोरेंस इज ब्लिस जो कहते हैं ना, सही कहते हैं। लेकिन आज भी ना इस बड़ी सी दुनिया में अपनी छोटी सी दुनिया बनाकर ना हम भी खुश रह सकते हैं, जहाँ जरूरी नहीं कि हर बात को सीरियसली लिया जाए और हर चीज का पर्दा फाश किया जाए। कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, और ये गाना भी वही कहता है कि कुछ ऐसा जहाँ हम बनाए। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear TV के antenna.
2: यादों को चिट्ठी।
1: हालांकि आजकल हमारे घरों के अंदर स्मार्ट टीवीज, वाईफाई, सेट टॉप बॉक्सेस इन सब की भरमार है, लेकिन फिर भी इन सारी सहूलियतों की भीड़ में तुम्हारी याद कहीं ना कहीं से निकलकर आ ही जाती है। रियलाइज होता है कि आज जो इतने आसानी से बैठ के हम टीवी देख रहे होते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन, विदाउट एनी इंटरप्शन, एक जमाने में हम परेशान हो जाया करते थे अगर गलती से कुछ चंद बूंदे भी पड़ जाया करती थी या हवा तेज हो जाया करती थी। दिल में एक ही डर होता था कि ओ नो, अभी तो वो पिक्चर शुरू होने वाली है जिसका कि हमने पूरे हफ्ते इंतजार किया है, वो DD1 पर आएगी, हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले ही आंधी तूफान के आसार कैसे आ गए, अब एंटीना हिलेगा, सिग्नल डुलेगा और हमारे प्लान पे रायता ढुलेगा। और जब बारिश आया करती थी ना, तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम तुम्हारे ऊपर पन्नी चढ़ा दिया करते थे। आई डोंट नो इफ इट एवर मेड सेंस और नॉट, बट हाँ, दिल को तसल्ली देने के लिए ये ख्याल अच्छा हुआ करता था गालिब। कभी तुम टी शेप में आते थे तो कहीं तुम गोल वाले शेप में आते थे, और इनफैक्ट जब तुम गोल वाले शेप में आए तो मुझे लगा ओहो, ये तो कुछ प्रीमियम टाइप का है जो हमारे यहाँ पे लगा है, क्योंकि सबके यहाँ तो टी शेप में है, हमारे यहाँ गोल वाले शेप में है। अक्सर ऐसा भी हुआ करता था कि छतों की सफाइयाँ होती थी तो पुराने एंटीने जो टूटे फूटे या तो उड़ के कहीं और से आए होते थे या हमारे ही घर के जो कभी टूट गए होते थे और रिप्लेस हो चुके होते थे नए वालों से, वो छतों की गंदगी के अंदर निकल निकल के आया करते थे। तुम भी क्या कमाल की चीज थे यार, बस एक बार छत पर टंग जाया करते थे तो ना जाने क्या क्या कैच करके हमारे टीवी पर दिखा दिया करते थे। तुम्हारी टेक्नोलॉजी मैं आज तक तो नहीं समझी थी, मगर हाँ, हमने तुम्हारी टेक्नोलॉजी का इंसान के साथ बड़ा इस्तेमाल किया है। नीचे से एक जना आवाज दिया करता था कि हाँ हाँ हाँ, आया आया आया, नहीं नहीं नहीं, रुक रुक रुक, और ऊपर बैठा एक इंसान ये मैसेज लिया करता था जो कि तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रहा होता था कि किस तरफ तुम्हें घुमाए, किस दिशा में तुम्हें लाए कि हमारा जो नेटवर्क है टीवी का वो आ जाए किसी तरीके से। थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं, और फिर फाइनली एकदम बढ़िया होकर स्क्रीन हो जाती थी हमारी एकदम ढाई। तुम्हारे सहारे हमने महाभारत, शक्तिमान, चित्रहार, फ्राइडे की फिल्में, सैटरडे की फिल्में, ये सब बिना हिले डुले देखी हैं। आज जब एक रिमोट से सैकड़ों चैनल्स बदल जाते हैं ना, तब तुम्हारी वो सादगी और तुम्हारा वो चैलेंज बड़ा याद आता है। तुम्हारे बिना तो टीवी देखना अधूरा सा लगता था। अब तो ना छत पर वो दौड़ भाग रह गई है और ना ही वो पिक्चर आ गई की खुशी रह गई है। वो एक्साइटमेंट ही अलग हुआ करता था यार, जब एक पिक्चर देखने के लिए इतनी मेहनत और हार्ट ब्रेक से डील करना पड़ता था। आज तो सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है और शायद इसी वजह से आज उसकी इतनी अहमियत भी नहीं है। तुम सिर्फ हमें टीवी नहीं दिखाया करते थे और ना ही सिर्फ हमारे नेटवर्क और सिग्नल्स को टीवी से जोड़कर रखते थे, तुम तो हमारी पूरी फैमिली को जोड़े रखते थे। और सिर्फ फैमिली ही क्यों, पड़ोसियों को भी हमसे जोड़े रखते थे जो हमारे घर पर टीवी देखने के लिए आया करते थे। तुम्हें याद करती हुई तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause it's hot.

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka diwana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में यस बॉस से ये जो गाना है ना, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये हम सभी की लाइफ का सच है बॉस। कैसेट के साइड ए का तीसरा गाना
3: मिर्ची 90s कैसेट।
2: एक दिन आप यू हमको मिल जाएंगे। भले कहावत है, कहते हैं कि लव फाइंड्स यू व्हेन यू नॉट सर्चिंग फॉर इट, यानी कि आपको जब लग रहा होता है ना कि यार अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो मतलब प्यार व्यार में मुझे नहीं पड़ना यार, मुझसे ना हो पाएगा, हमसे होता ही नहीं है, हमको आता ही नहीं है, ठीक उसी वक्त आपको प्यार ढूंढ ही लेता है। आप नहीं ढूंढते हो, प्यार खुद आपको ढूंढ लेता है, खुद चल के आपके पास आ जाता है। और यही इस गाने का भी फील है, जहाँ पर इंसान जो है वो ये सोच रहा होता है कि यार एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा ना था, प्यार भी कुछ ऐसी ही चीज होती है और इतनी खूबसूरत चीज होती है, क्योंकि हम जब सोच रहे होते हैं ना कि यार प्यार व्यार नहीं हो सकता यार, बहुत दिल तोड़वा लिए यार, अब मेरी हिम्मत नहीं है, बस उसी वक्त आपको वो इंसान मिल जाता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, या यूं कहें कि सोचा होगा लेकिन ये भी सोचा होगा कि यार ऐसे इंसान तो होते ही नहीं है। लेकिन सच बात बताओ, ऐसे इंसान होते हैं भाई, सबकी किस्मत में एक बढ़िया इंसान लिखा हुआ है। और तभी ये लाइन आती है कि एक दिन जिंदगी होगी इतनी हसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन। और आप खुद से ही कहोगे कि मैंने सोचा ना था। दुआ करती हूँ कि आपकी जिंदगी में ये पल जल्द ही आए, अगर अभी तक आया नहीं है तो। और इसी के साथ इस दुआ को कबूल फरमाए और इस गाने पर जाएं, यानी कि ये गाना अब आपके लिए मैं लगाते हुए जा रही हूँ। और आपसे कहती हूँ हम हराई प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

मिर्ची, मिर्ची, इट्स हॉट।

इट्स हॉट मिर्ची, इट्स हॉट

बस तेरा चले तो ले ले पूरा दिन, हो तैयार तो घंटे न गिन, मैं हूँ यही एच सर्विस, टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट, हाथ मेरा थाम, लेट मी मेक यू स्माइल, आई लाइक योर स्वैग, यू लाइक माय स्टाइल, देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ, जब भी होती लो तो मेरा नंबर करे डाल, मैं हूँ तेरे साथ तू है मेरे संग, तेरे साथ टाइम की खबर न लगे, किसी भी चीज में कसर न लगे, मांगू दुआ यही नजर न लगे, बेबी ऐसे है मत हमें क्या मत, तू मुझको मिली है, ये है मेरी किस्मत।

0: यार लाइफ के बोरिंग गेम्स खेल खेल के परेशान हो गए हो तो जरा आओ मेरे साथ गेम खेलो।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े मैं तो मिर्ची फिल्मची ढूंढ रही हूँ यार। बेसिकली इस गेम सेक्शन के जरिए मैं आपसे बोलती हूँ अपना नंबर देने के लिए थ्रू माई इंस्टाग्राम और फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। उसके बाद फिर ये गेम का सिलसिला चालू होता है जिसके थ्रू मैं आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को निकालती हूँ यार। सो अभी कुछ देर पहले अनुष्का ने मुझे कॉल किया था, उनसे जो भी सिलसिला चला उसमें ब्रेक लग गया बीच में। अब उस पॉइंट से देयर इज दिस अनदर पर्सन विक्रांत जो मेरे साथ ये गेम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं सर?
3: यस प्लीज।
0: सो वी एंडेड एट बंटी और बबली में लीड एक्ट्रेस का नाम क्या है?
3: रानी मुखर्जी।
0: क्या बात है, रानी मुखर्जी की फिल्म जिसमें उनका नाम टीना था।
3: कुछ होता है।
0: Awesome! कुछ होता है कि लीड एक्टर कौन थे?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें उनका डायलॉग है किरण
3: डर
0: डर की लीड एक्ट्रेस का नाम?
3: जूही चावला।
0: जूही चावला की एक फिल्म जिसमें वो अक्षय कुमार के साथ नजर आई है।
3: अक्षय कुमार के साथ नजर आई है?
0: हाँ जी।
3: ओ गॉड, दिस इज समथिंग खिलाड़ी।
0: यू आर गोइंग देयर।
3: मिसेस खिलाड़ी।
0: ऑसम ऑसम। तो भाई विक्रांत जी ने तो इस सर्कल को कंप्लीट कर दिया है, तो इसी के साथ आपको भी ये टैग देना बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो इसी के साथ एक बार फिर से कल मिर्ची फिल्मची की खोज जारी रहेगी, बट अभी के लिए स्टेडियम टू मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति। इट्स हॉट।

0: बैग से करेंगे सबका स्वागत।
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट।